0: ये है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: 4 beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ.

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Mum, I'm outside.
5: Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
9: Leica Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Breaker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: Taza kare apni yaadein. Like a gold ke saath.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

जाने मन कोए। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

गान पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवै लख होवै लखवीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Star Tours

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
2: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
2: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर का मजा लीजिए।
5: परंपरा भी, फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA, कॉल 07555-506015।
6: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan।
7: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
8: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
9: Akkan chakkan, dahi chatokan, aao bacho, aagay bachan.

0: लायका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है
3: तो फिर इंतजार क्यों हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में
2: सच
3: बिल्कुल देश का असली स्वाद लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह
4: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इल्फोर्ड IG2 6HA कॉल करें 07555-506-015 बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ In Ilford.
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
8: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
9: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Another huge giveaway is coming. Leica Radio

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
4: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: Mamster पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
4: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल.
5: Time for Listener of the Week.
6: Hi, my name is Sejal and I'm the Listener of the Week on Laika Gold. I love listening into the Gold Breakfast Show because it just takes me back to my childhood and happier times. Listen to my playlist from Monday to Friday only in the Gold Breakfast Show with Gajal on Laika Gold.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel at all protected.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.

0: Like a gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24
5: लाइन. The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
7: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on Like a Gold.

0: कैशियर।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। संगीत प्रेमियों को हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। दिस इज कॉल्ड मनोरंजन प्रोग्राम। अभी अभी स्टूडियो से निकली है काजल। वी शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग विद अनदर ब्रेकफास्ट शो। और अब मेरी बारी है। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मजे में हैं? आई नो दैट। और नहीं है तो भाई मजे में हो जाएंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके होते हैं। ये सुख दुख धूप छाव इन सबको झेलते हुए इनके साथ खेलते हुए आगे बढ़ेंगे, जिंदगी सुहाना सफर बन जाएगी। मंगलवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 21 तारीख हो गई आज। और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का 10:05 हुए हैं। और साहब डायरी खुल गई है, शायरी मिल गई है और उसके साथ ही एक गीत जोड़ करके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चंदा को मेरी बात मुनासिब नहीं लगी, तारे मेरे कहे का बुरा मान गए हैं। केवल जमीन के ही नहीं आसमान के भी जलते हैं तेरे रूप से हम जान गए हैं। हमने नजर नजर में उतारी तेरी नजर और दिल ही दिल में हम तेरे कुर्बान गए हैं। गुलशन में फूल फूल पे खाया तेरा फरेब, धोखे में तेरे हम तो गुलिस्तान गए हैं। तेरे धोखे में फूलों को देखा, कलियों को देखा और बहाने से अनजाने में तेरी सहेलियों को देखा। तू ही है हर फूल में जान।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

गाना खत्म हो गया शर्मा जी, कहाँ देख रहे हो? मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभर कर आ रही हैं और आज के दिन की घटनाओं के चित्र दिखा रही हैं। लेकिन पहले बता दो भाई, बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आए, उनके मैसेज भी स्क्रीन पर आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच हेना जी, वियाना वाले अनिल जी और भाई हमारी नैना शाह और देशराज मैसन साहब, रेगुलर लिसनर, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर और बहुत प्यारे प्यारे श्रोता हैं आप। सलोमे पम्मी और रीटा जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो नाम नहीं लिखते हैं लेकिन चेहरा भाई देख करके पहचान जाते हैं कि आप वजाहत हाशमी साहब हैं। और भाई साहब सबको स्वागतम कहते हुए बता दूं कि 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के खास खास समाचार और उसके बाद 11 बजे की खबरों के बाद होगा आज का विचार यानी चिंतन। और भाई आपकी मन भावन गीत तो पूरे कार्यक्रम में छाए रहेंगे। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तुम मिले प्यार से और हमें जीना गवारा हुआ, कौन मिल गया ऐसा? बोले 10 डाउनिंग स्ट्रीट को नया क्या कहते हैं वो रेजिडेंट मिल गया।

0: कुछ एक वो सख्त कदम उठाएंगे, कुछ एक पॉलिसीज में चेंज करके, खासकर वो कहते हैं रफ स्लीपिंग ब्रिटेन में। आपने देखा होगा सड़कों पर, हमने देखा लोग सो रहे हैं भाई, कंबल वम्बल जुटा करके और कहीं पर छोटा सा कोना देख करके। ये ब्रिटेन की छवि जो है वो उजागर करते हैं। कल तक भाई तीसरी दुनिया के देश जीने कहते थे और वहाँ की चित्र दिखा करके जो आलोचनाओं का शिकार बनाते थे, आज ब्रिटेन वैसी स्थिति में अगर जा रहा है तो प्रधानमंत्री को चिंतित कर रहा है, ये बात है। और बाकी बातें आप खबरों में सुनेंगे 10:30 बजे। फिलहाल तो लेट मी टेल यू हाउ द पाउंड इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडियन रूपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा चल रहा है, पैसे अपनों को क्यों नहीं भिजवा रहे हैं भारत में। आज एक पाउंड के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 128 रुपए और 90 पैसे। यस, 128.9 इंडियन रुपीज यू कैन गेट एंड यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। TNDC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express... a few things, because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: Atco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 02085748410
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime Location
9: High Appreciation
10: in Dubai
11: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
12: Well, she is talking about Jaimin food potato

0: चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमिन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
2: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
5: लीजिए साहब, गीत सुनाने से पहले डायरी का पन्ना खोलें. शिकायत है, लिखा है वहां हरगिज न जाना था जहां पहुंचा दिया मुझको. नजर के एक इशारे ने कहां पहुंचा दिया मुझको. बड़ी उल्फत से मांगा था हसीना से पता घर का, जरा देखो तो शहरे दुश्मना पहुंचा दिया मुझको. ये धक्कम पील अब क्या खाक ले जाएगी और आगे, जहन्नुम में तो मेरे मेहरबान पहुंचा दिया मुझको.
6: अगर बेवफा तुझको

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: अगर बेवफा तुझको पहचान जाते जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत की ये दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत ना करियो कोई। भाई ये बृहस्पतिवार वाला गीत आज मंगलवार को प्रोग्राम में शामिल हो गया, इसे हम अपनी बहन मिसेस शेख के नाम कर देते हैं क्योंकि अक्सर उनकी शिकायत रहती है आप थर्सडे को दर्द भरे गीत ज़्यादा नहीं लगाते। भाई ये दर्द तो कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। इसकी चर्चा होगी आज चिंतन में कि दर्द और खुशियाँ साथ साथ चलते हैं, बारी बारी से मिलते हैं, बस जीवन इसी का नाम है। तो साहब ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुना, लेकिन रात के अंधेरे में फिल्म का ये गीत लता जी के स्वर में भी है, कभी वो भी सुनवाएंगे। फिलहाल तो आज के प्रमुख समाचारों की ओर जाएंगे। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि वो जो रफ स्लीपिंग कल्चर यहाँ डेवलप हो रही है उसे समाप्त करने में प्रायोरिटी देंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन ज़्यादातर खबरें भाई हम भारत से कलेक्ट करते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप से, सब कॉन्टिनेंट से लेते हैं। तो वहाँ से आने वाली खबरों में सिक्किम में एक सुरंग हादसा हुआ है, 8 डेड बॉडीज बरामद हुई है, 25 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर पर सख्ती देखी गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की कई चीजों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। आइए विस्तार से देखते हैं खबरों को। पहले तो ये खबर के सोनम वांगचुक के नाम आप कई दिनों से सुन रहे हैं। भैया वो नौजवान नेता हैं जिन्होंने भूख हड़ताल करके स्टूडेंट्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। वो जो पेपर लीक हो जाने पर नुकसान हुआ बच्चों का, तो वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, न्याय मांग रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाज़त दे दी है। हालत बिगड़ रही थी, 21 दिन हो गए थे उन्हें भूख हड़ताल करते हुए। वांगचुक की ओर से उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने परसों संडे को दिल्ली हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन ने सीजेपी प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन में शामिल छात्रों के साथ मारपीट के मामले में प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार स्टूडेंट्स के मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने से बच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके संसद में स्टूडेंट्स के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है। सीजेपी के जख्मी प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ जेपी नड्डा ने एक बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के विरोध मार्च के दौरान जख्मी हुए लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ भी बातचीत मीटिंग की है। मानव अधिकार संगठन यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत में शांतिपूर्ण विरोध की आवाज़ को दबाया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ताकत का अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के बयान दिए हैं। लाठीचार्ज हुआ उन पर, भाई वहाँ से जंतर मंतर से उन्हें हटाया गया। भारत ने रूस के डिप्लोमेट्स को तलब किया और हमले में 4 भारतीयों की मौत पर एक स्टेटमेंट जारी की है। कार्गो शिप MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 हिंदुस्तानियों की मौत के मामले में भारत सरकार ने आज नई दिल्ली में रूसी एम्बेसी के प्रभारी को बुलाया, तलब किया। मिनिस्ट्री ने कहा कि इस तरह के हमले इंटरनेशनल समुद्री व्यापार की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और विश्वसनीयता भरोसे को कमजोर करते हैं। मॉनसून सेशन के दूसरे दिन आज एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। बैठक के बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने मीडिया को प्राइम मिनिस्टर की एड्रेस की जानकारी दी। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एक अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग में हुए हादसे के बाद 8 डेड बॉडीज अब तक बरामद कर ली गई हैं। ये सुरंग एनएचपीसी की तीस्ता जल बिजली परियोजना प्रोजेक्ट के छठे चरण का हिस्सा है। नामची की जिला डिप्टी कमिश्नर अनुपा तामलिंग ने हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड विभाग की टीमें अभियान चला रही हैं। किसान महापंचायत से पहले दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर सख्ती। सरवण सिंह पंडेर का एक बयान आया है, किसान नेता है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा बैरिकेड लगाए गए हैं और घग्गर नदी पर बने पुल पर सीमेंट के ब्लॉक भी रखे गए हैं। दिल्ली के किसान घाट पर देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले प्रस्तावित भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ एक दिन की किसान महापंचायत आज ऑर्गेनाइज की जा रही है। किसान नेताओं ने कहा था कि पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इस महापंचायत में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद सोनू सूद, भूमि पेडनेकर और रितेश देशमुख सहित कई फिल्मी हस्तियों ने उनके समर्थन में बयान दिए हैं। कल सोमवार को हुए संसद मार्च के बाद सिनेमा जगत से जुड़ी हुई कई हस्तियां इन प्रदर्शनकारियों की हिमायत में आ गई हैं। सोनू सूद ने एक्स पर लिखा कि हमारे छात्रों को लाठियां नहीं गले लगाने वाले हाथ चाहिए स्टूडेंट्स को। और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि वॉयलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हमने वॉयलेंस की तस्वीरें देखी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे देश के नौजवान इस आंदोलन में हिंसा का सहारा ना लें, वॉयलेंट ना हो, यह आंदोलन अपने रास्ते से ना भटके, डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत और संवाद पर आधारित जो है कैंपेन चलाएं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह खबरें अटकलों में हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की महासभा में बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना पर उनका कार्यालय विचार कर रहा है, मेयर का दफ्तर विचार कर रहा है। इसके बाद ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बेन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका में रहते हुए किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है भाई, दिल्ली से ये वार्निंग दी गई है कि आज सुबह से बारिश हो रही है वहां दिल्ली में, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है, यह भविष्यवाणी की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले कई तरह के सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। बल ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: सूचना और समाचारों की दुनिया से निकलकर अब फिर से संगीत के क्षेत्र में प्रवेश कीजिए, म्यूजिक का मजा लीजिए। सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की सदाबहार आवाज़ें।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: book now. Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Dad!
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
10: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
11: Bikaner wala parampara bhi.
12: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
13: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
14: और आइए देखते हैं ये गीत हमें पहुंचाता है खबरों तक. 11 बजे के समाचारों के उस पार होगा आज का विचार यानी चिंतन. बने रहिएगा हमारे साथ. दोपहर बाद 1 बजे तक मनोरंजन कार्यक्रम आप रवि शर्मा के साथ सुन रहे हैं.
15: रवि शर्मा

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में, दूसरे भाग में। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर मैं दोपहर बाद एक बजे तक यहां स्टूडियो में हूं। उसके बाद बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे। ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो गए हैं। वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई आज का विचार हम अपनी आसपास की घटनाओं से लेकर के जुटाते हैं, हमारे साथी हमारे मित्र हम तक जानकारी पहुंचाते हैं, उन्हीं से चिंतन बन जाते हैं। एक घटना बल्कि दुर्घटना कही उसे जिसने झकझोर के रख दिया है समाज को, देश को, लोगों को। और हम उससे धारणा बना लेते हैं कि कलयुग का दौर है, ऐसे हादसे, ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं, ऐसी बुरी घटनाएं लोग अंजाम देते रहते हैं, अपराध करते हैं। कितना बुरा जमाना आ गया है, लोग कितने खराब हो गए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब कभी कोई बुराई जन्म लेती है तो उसके साथ टकराने के लिए इंसानियत भी सामने आती है, और दुख की घड़ी में जीत इंसानियत की होती है। कुछ एक घटनाएं नहीं, कई बातें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जो हमारी धारणा बनाने में अपना रोल अदा करती हैं। पिछले दिनों एक घटना घटी, दुर्घटना, एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को इस घटना ने झकझोर दिया। यहां ब्रिटेन में, लंदन में, साउथ हॉल में एक यंग लड़की की हत्या कर दी गई, किरण दीप कौर, 24 साल की लड़की। अब इसके बारे में आज के चिंतन में हम जो आलेख शामिल कर रहे हैं, बलविंदर कौर जी ने साउथ हॉल से और उनके पति जसकरण सिंह ने यह जानकारी भिजवाई और कहते हैं कि सावधान रहने की आवश्यकता तो है, लेकिन इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि भाई सारा देश ही या सारा जगत ही, सारा संसार ही बहुत बुरा हो गया है। बुराई के साथ साथ अच्छाई भी अपना रोल अदा करती है। कैसे? बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी कारण के किरण दीप कौर साउथ हॉल में अपने घर सो रही थी, साथ में उसका बच्चा भी था, यहां पढ़ने आई थी, 24 साल की उम्र उसकी, और बिना कारण ही एक अपराधी उनके घर में घुसा और चाकुओं से इतने वार किए उस लड़की पर कि उसकी डेथ हो गई। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां आते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके माँ बाप जमीनें बेचकर कर्जे उठा करके उन्हें भेजते हैं और वह यहाँ आकर के कामयाब होने की कोशिश करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, छुटपुट काम मिल जाए तो वो भी करते हैं। ज्यादातर बच्चे बड़े मेहनती और बड़े स्वावलंबी होते हैं। किरण दीप भी ऐसे ही आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेजिकली शी वॉज स्टैब्ड, अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ उनके ऊपर। इस संदर्भ में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कानून अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन वो परिवार, पंजाब में उसके माता पिता और उसका बच्चा, उसका पति भी जख्मी हुआ, क्या सोचेंगे आप? इस देश में क्या हम सुरक्षित नहीं हैं? क्या इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे विश्वास को डिगा देंगे कि हम अच्छे लोगों के बीच भी रह रहे हैं? बुराई कलयुग में है, लेकिन इससे टकराने के लिए अच्छाई भी है। जानकारी मिली हमें गुरमेल सिंह मल्ही जी, जो गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं, परिवार की सहायता के लिए एक फंड स्थापित किया गया, लोग मदद के लिए आगे आए। और आपको बताएं कि भाई किरण दीप के लिए
उसके जख्मी परिवार के लिए डोनेशंस के रूप में लोगों ने दिल खोल करके फंडिंग की। अटैक करने वाले अगर दुनिया में हैं, अपराध करने वाले अपराधी हैं, तो मदद करने वालों की भी कमी नहीं। अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे हैं, पर वो अगर अच्छों के मुकाबले आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं देख रहा हूं केरीहाल नाम के एक व्यक्ति ने 5,000 पाउंड डोनेट किए और उसके बाद 200, 500, 50, 20, 1 पाउंड से लेकर के भाई हजारों पाउंड तक मदद के लिए आगे आए। मतलब यह है कि दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई नहीं है, बड़ी संवेदनशील लोग भी हैं। किरणदीप कौर की नृशंस हत्या हुई, बहुत बुरा हुआ, एक दर्दनाक घटना है। एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी जिसके जीवन के अनेक सपने अभी पूरे नहीं हुए थे, वो अचानक इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा उस परिवार को होती है जो अपने प्रियजन को खो देता है। लेकिन इस दुखद घटना के बीच प्रेरणा की यह तस्वीर सामने आई है कि ब्रिटेन में रहने वाले न सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के लोग, दूसरे लोगों ने भी डोनेशंस भेजे। अनेक अनजान व्यक्तियों ने परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने आर्थिक सहयोग दिया, फाइनेंशियल हेल्प, तो किसी ने सांत्वना के शब्द कहे, तो किसी ने अंतिम संस्कार और पार्थिव शरीर को भारत पहुंचाने के इंतजाम में कॉपरेट किया। यही तो मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जाति, धर्म, भाषा या देश नहीं देखता है दुख। जब दुख का पहाड़ टूटता है तो हमें याद आती है अपने गुरुओं की, अपने प्रभु की। प्रभु सबके कष्ट दूर कर, ऐसा हादसा किसी के साथ किसी भी परिवार में ना हो। आपका दयापूर्ण, आपकी दयालुता का हाथ सब पर रहे। तेरे पाणे सर्वत दपला, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।

0: मल्ली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इनिशिएटिव के लिए। आपके परिवार में भी ऐसी दुर्घटना का वही संदेश मिला है। आप बहुत बहुत, मैं कहूँगा कि सेंसिटिव व्यक्ति हैं और एक अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं। गुरमीत सिंह मल्ली साहब, आपकी ओर से भी संदेश मिला। जसकरण सिंह ने और बलविंदर कौर जी ने ये जानकारी हम तक भिजवाई कि किरणदीप 24 साल पंजाब की ये बेटी, एक माँ, एक पत्नी और यंग स्टूडेंट 24 साल की, जिसकी हत्या कर दी गई। ईश्वर परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। अपराधी गिरफ्तार हुआ है और भाई कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक समाज के रूप में, एक सामाजिक परिवार के रूप में हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है और आप निभा रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि लगभग 60,000 पाउंड रेज किए जा चुके हैं और लोग कर रहे हैं। कोशिश रहे कि इस तरह के हादसे हमारे आसपास ना हो, और कलयुग है, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो हम मदद के लिए, सपोर्ट के लिए तैयार रहे। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। न समझू जगत में किसी को पराया, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो। मेरा सर झुके तो झुके तेरे आगे, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो। मिले राह में जो कोई दीन दुखिया, तो मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने संदेश भेजे हैं और ये लिखते हैं कि हम बहुत दुखी हैं इस घटना से। आप बड़े क्या कहें भाई, दूसरे के दुख को जो आत्मसात करता है वो संत स्वरूप होता है। मुझे भी इमोशनल कर दिया बहुत सारे संदेशों जो स्क्रीन पर आए हैं। बहुत बहुत आभार। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद दिला रहे हैं, भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो रेट इस समय है 128.9 रुपीस। SBI यूके दे रहे हैं 128.90 रुपए फॉर 1 pound। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Gold. 10:35 a.m.

0: जिंदगी वहाँ सेटल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
4: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place

शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। भाई ये पुरानी फिल्म, जितेंद्र थे हीरो, राजश्री थी शायद हीरोइन, और ये गीत शायद राजश्री पर ही पिक्चराइज हुआ था।

0: जितेंद्र भाई उन दिनों यूं समझिए कि सुपरस्टार बनने की राह में कदम आगे बढ़ा रही थी। यंग नौजवान आई थिंक दिस फिल्म वॉज ब्लैक एंड व्हाइट। 1967 में ये फिल्म मैंने दिल्ली के कुमार सिनेमा में देखी थी, छोटा सा स्क्रीन, बहुत बड़ा नहीं, और भाई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का आनंद लिया। अब ये चांदनी चौक में है कुमार सिनेमा, और साहब फिल्म की कहानी बड़ी द्रवित करने वाली थी, तो गीत राम करे कहीं नैना ना उलझे, शंकर जया किशन की बनाई धुन पर ये गीत आपने सुना लता जी की आवाज़ में। और अब क्या कुछ एक संदेश है और उसके बाद में, हाँ एक संदेश तो यही है कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ फिर से आ रहा है एट ओवो वेम्बली अरीना में संडे 27 सितंबर को। तो साहब स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन इवेंट स्टार्ट्स एट 6:15 PM एंड रन्स अंटिल 9:30 PM। अपनी टिकटों का इंतजाम कर लीजिएगा साहब www.diwalistory.com से। लाइक आर रेडियो नेटवर्क इज प्राउड पार्टनर ऑफ दिस इवेंट।
1: ये है Like a Gold Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

हमारे महबूब भी आए हैं, बहुत सारे। सुलोचना सेठी कह दिए मैं जुड़ी हुई हूँ आपके कार्यक्रम के साथ। ललित छत्री साहब, विजय मॉरिशस वाले, मानसी थैंक यू।

0: सूरज फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज में, ये भी शंकर जयकिशन की बनाई धुन थी। और साहब कल राजेंद्र कुमार साहब का जन्मदिन था, बाली भाई ने काफी गीत सुनवाए उनकी फिल्मों के। ये गीत तो साहब अपने जमाने का, और मैं तो कहूंगा हर जमाने का सुपरहिट गीत रहा है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a Gold.
1: Like a Extra podcast update.
0: और भाई इस बार हमारे पॉडकास्ट में आप हमारे प्रेजेंटर्स का परिचय देख पाएंगे। वेल द टाइटल इज लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर। तो आपको बता दें कि ये अब इस समय उपलब्ध है, ये कौन सा है 25वां एपिसोड है। देखिए और प्रेजेंटर्स के बारे में जानिए, जानिए कैसे वो रेडियो इंडस्ट्री में एंटर होकर के कितना संघर्ष करके अपनी जगह बनाते हैं, और भाई फिर हर घर में उनका नाम और काम पहुंचता है। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है लाइका गोल्ड।
0: और भाई लाइका गोल्ड से हम बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं कनिष्क नारायण को। कौन है भाई? ये भाई एंडी वनहम की नई कैबिनेट के सदस्य हैं, मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें शामिल किया गया है। भाई ऐसे काम के लिए ऐसे ही नौजवानों को जो है शामिल किया जाता है, उन पर भरोसा किया जा सकता है। ही विल अटेंड द कैबिनेट एंड आपको बता दें साइंस और इस क्षेत्र का बिजनेस नॉलेज भी इनकी है, साइंस के बारे में भी वे विद्वान हैं, और मूल रूप से भारत से हैं लेकिन पढ़े हैं और कढ़े हैं कहेंगे कार्डिफ में। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बट रेस्ड इन कार्डिफ एंड नाउ ही हैज़ बीन इंक्लूडेड इन न्यू गवर्नमेंट्स कैबिनेट, मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कनिष्क नारायण, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Dad,
7: what's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Yaar, kabhi kabhi apne desh ke chole bhature, raj ko chori और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
9: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
8: सच?
9: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
10: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इल्फोर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फोर्ड।
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
15: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: SonarTours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get £600 off. Call SonarTours on 0208 951 0111.
16: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो LeicaGold.com पे।
18: Feel good hits in the sun with Leica Gold.

0: ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स हरी ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट क्वालिटी फूड्स क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा
4: और लीजिए साहब ये अधूरा सा गीत हमको लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक जाएंगे हम धूम मचाते हंसते गाते और खेलते खिलाते आज वर्ल्ड चेस डे है विश्व स्तर पर विश्व शतरंज दिवस क्या करते हैं इस दिन शतरंज खेलने के लिए भाई प्रेरित करते हैं दिमाग की एक्सरसाइज होती है भाई कोई भी खेल आप खेलें शरीर को और मन को स्वस्थ बनाते हैं आइए आप और हम खेलें खेल कौन सा लुक्का छुपी

0: कहीं
1: तो भाई हेमा जी जिन दिनों वो क्या कहे कि भाई हीरोइंस में टॉप पोजीशन पर थी उन दिनों मैंने उन्हें एक स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड करवाया उनसे उनकी आवाज में, और भाई इतना करीब से उनको स्क्रिप्ट दे करके उनके साथ खड़े होकर माइक के साथ पास और कुछ मतलब कमर्शियल वर्ड्स रिकॉर्ड करवाए थे, लग रहा था सचमुच ड्रीम गर्ल है वो, साक्षात हो गई है स्टूडियो में। वो तस्वीरें कहीं हैं मेरे पास, हेमा जी की उस जमाने की तस्वीरें। शी इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक, आप उनकी बहुत सी फिल्मों के गीत सुन पाएंगे।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट derivalley.net।
1: भाई कोई बहुत ही खूबसूरत छवि आपके सामने हो और आप आंखों ही आंखों में उस इमेज को अपने हृदय में उतार कर फिर एक कागज लेकर उस पर कविता करने लगते हैं या शायरी लिखने लगते हैं, संभव है। यस पॉसिबल है।

ना गुल के लिए फुर्सत ना खार देखते हैं, हम तो तुझी को हरदम दिलदार देखते हैं। देता नहीं तुम्हारे आने की खबर कोई, हम दिल की धड़कनों की रफ्तार देखते हैं।

तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सदा, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं।

What a song. देखिए सुरताल और दर्द की अभिव्यक्ति के साथ साथ कुछ सूचना भी। एक तो दायका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।

0: लेना कन्वीनियंट हो। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा
2: और मनोरंजन के साथ साथ ये भाई जानकारी भी आपको दे दें कि आज जन्मदिन मनाने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। फिल्मी हस्तियों का जिक्र तो बाली भाई करते हैं और मुझे यकीन है आनंद बख्शी पर वो बहुत सारी जानकारी जुटा के लाएंगे, क्योंकि आनंद बख्शी आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। 21 जुलाई 1930 में रावलपिंडी में जन्मे थे वो। इसके अलावा भाई संग्राम सिंह एक हमारे हरियाणा के पहलवान हुए हैं, प्रोफेशनल रेसलर, उनका आज जन्मदिन है। 1985 में आज के दिन रोहतक में मेरे शहर में जन्मे थे वो, तो भाई उन्हें हैप्पी बर्थडे, सुन रहे होंगे। तो आशीष चौधरी आज जन्मे थे गुवाहाटी में, और साहब कुछ और भी कलाकार, अमर सिंह चमकीला, ही वॉज बॉर्न इन 1960 टुडे। राजनीति में है कुछ लोग जिनमें एक तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ही वॉज बॉर्न इन कर्नाटक इन 1942। और एक और राजनीतिज्ञ शंकर सिंह वघेला, गांधीनगर गुजरात में जन्मे थे 1940 में, आज ही के दिन। और कौन जन्मे थे, हाँ एक उमाशंकर जोशी, बहुत जाने माने प्रतिष्ठित कवि लेखक हैं गुजरात के भाई, वो भी आज ही के दिन जन्मे थे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू ऑल द पीपल हु बॉर्न टुडे, इंक्लूडिंग हमारे जो श्रोताओं में जिनका किसी का आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: भेजेंगे सेंड मनी, तो पहले रेट तो बताइए भाई। लेमफाई के रेट्स हैं, एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में इंडियन करेंसी में वो दे रहे हैं 129.06 रुपीस, पाकिस्तानी 372.61, श्रीलंकन रुपए 451.11, बांग्लादेशी टकास 165.39 एंड अफगानी 89.83।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: और भाई गोल्ड रेट बता दूं आपको, सोना इस समय बिक रहा है 97.46 पाउंड्स का एक ग्राम।
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
5: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Cycle Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, Premium and made it the way our eldest used it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
10: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Start to

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: और लीजिए साहब, अब मनोरंजन को समेटने का समय हुआ जाता है. लेस्टर में हमें डॉक्टर हरीश भूटानी और डॉक्टर उषा भूटानी जी सुन रहे हैं. भाई बहुत बहुत धन्यवाद. आज का एक या दो गीत तो क्या, पूरा प्रोग्राम आपके नाम. थैंक यू सर. और भाई मानसी आपका भी धन्यवाद. प्रदीप सोलंकी ब्रैकनल में, सहर जी आपका भी धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत आभार. अंजलि सुन रही हैं बैक्सरी हीथ में. राजेंद्र राज जी आपका भी शुक्रिया. भाई अब गठरी बांधते हैं और कहते हैं कि शाम होने को है, माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए. दामने यार की जीनत न बने हर आंसू, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाए रखिए. कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, हर राह गुजर को फूलों से सजाए रखिए. इजाजत दीजिए. हैव अ सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा.

0: वाह वाह वाह वाह वाह, डफली वाले डफली बजा और पहला गाना भी धमाल कर दिया। वेलकम टू गोल्ड आफ्टरनून्स विद मी बाली ब्रह्मभट, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, आल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। एंड आज का दिन जो है, विच इज द 202nd डे ऑफ 2026, 163 डेज लेफ्ट, एंड वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन आनंद बख्शी। आनंद बख्शी का असली नाम बख्शी आनंद प्रकाश वैद। ही वॉन्टेड टू सिंग बट बिकेम अ ग्रेट राइटर। इनको डिस्क्राइब किया था, इनकी पूरी कहानी सुनने के बाद और गाने सुनने के बाद महेश भट्ट जी ने कहा, आनंद बख्शी अ स्टेडी फ्लेम विद अ साउंड माइंड। यस, अ स्टेडी फ्लेम विद अ साउंड माइंड। हिज एबिलिटी टू ट्रांसलेट और एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस इनटू सिंपल रिलेटेबल वोकैबुलरी, दैट वाज हिज स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मतलब मजबूरी कहो तो भी चले, क्योंकि उन्होंने अपने आप कहा था, उन्होंने यही कहा था कि मैं 8 चौपड़ी पढ़ा हूँ, मेरी वोकैबुलरी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं क्यों अच्छा लिख पाया, बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। मेरी जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से मैं इतना अच्छा लिख सका। What were his experiences? Okay, वो कहाँ जन्मे थे और कौन सी उम्र में उनका इंतकाल हो गया, ये सब तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो इनके एक्सपीरियंसिस क्या थे जिसकी वजह से ये इतना दर्द भी कागज पे लिख सकते थे, हंसी मजाक वाले गाने भी लिख सकते थे, पंजाबी का तड़का भी दे सकते थे, जैसे बिंदिया चमकेगी वैसे गाने, ताल से ताल मिला वैसे गाने। तो इनकी कहानी कुछ यूं जाती है कि व्हेन ही वाज बोर्न इन रावलपिंडी ऑन 21 जुलाई 1930, उसके बाद पार्टीशन के बाद जो भी सामान आया वो लेके भागो। यस, पार्टीशन के बाद छोड़ना पड़ा वही पिंड जहाँ पे वो बड़े हुए थे, उनकी सब यादें उनकी फीलिंग सब वहीं थी। रावलपिंडी छोड़ के पार्टीशन के बाद एक डकोटा एयरक्राफ्ट में 2 अक्टूबर को 1947 में वो दिल्ली आए। उम्र क्या थी, सिर्फ 17 साल की, अ 17 ईयर यंग टीनेजर arrived in Delhi, फिर वहाँ से फैमिली के साथ पुणे गए, पुणे से मीरठ आए, मीरठ से वापस दिल्ली आए। आप सोचो आँख बंद करके, अगर आप इनकी जगह में होते, 17 साल का लड़का जो अपनी लाइफ इतनी इन्जॉय कर रहा है रावलपिंडी में, वहाँ गांव में फिल्मी गाने सुनकर अपनी पोइट्री लिखना, ग्रैंडफादर सुपरिंटेंडेंट थे प्रिजन में, फादर भी मैनेजरियल पोजीशन में थे, लेकिन दे वर टोटली अगेंस्ट हिम डूइंग ऑल दिस म्यूजिक बिजनेस एंड राइटिंग एंड ऑल दैट। तो वो रस्ते पे जाके ही यूज टू लिसन टू ऑल दिस फिल्मी सॉन्ग्स, फिल्में देखना और छोटे छोटे पोएट्री लिखना, एंड ही वॉज इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। अब ये सब करते हुए जब पाकिस्तान में थे, तब पाकिस्तान नहीं था, इट वॉज रावलपिंडी में जब थे तभी नेवी में थे, इंडियन नेवी में। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वो आर्मी में ज्वाइन हुए। आर्मी में जब थे तभी भी वो आर्मी के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पे वो एंटरटेन किया करते थे, अपने गाने सुनाते रहते थे, लेकिन आखिर में उनका जो मन था वही उन्होंने किया, वो बॉम्बे पहुँच गए। और बॉम्बे पहुँचते ही दर बदर ठोकरें खाई, इट वॉज़न्ट ईजी फॉर हिम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गाने लिखने लगे। कौन सा गाना पहला लिखा था, कौन सा बाद में लिखा था, वो सब बाद की बात है, लेकिन 1962 में एक गाना आया था एक फिल्म थी जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी, एंड गाना था मेहंदी लगी मेरे हाथ। और उसके बाद 1962 में काला समुंदर में उन्होंने गाना लिखा मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम। फिर 1965 में हिमालय की गोद में, जहाँ पे कल्याण जी आनंद जी थे अगेन, जब जब फूल खिले में भी कल्याण जी आनंद जी थे। इनकी जब दोस्ती हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, वहाँ से इतने गाने लिखे। सोचो तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 7 अवार्ड मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, उसमें से 6 गाने तो आनंद बख्शी के ही लिखे हुए थे। सिर्फ दोस्ती फिल्म के गाने मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अवार्ड मिला, लेकिन उसके बाद जितने भी थे, मिलन फिल्म, सावन का महीना, जीने की राह, आप मुझे अच्छे लगने लगे, 1978 में अमर अकबर एंथनी, पर्दा है पर्दा, 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम, 1980 में डफली वाले फिल्म सरगम, और 1981 में कर्ज। तो ये सब जो गाने इन्होंने लिखे और विन किए, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग इनकी निंदा करते थे। क्या निंदा करते थे? 41 नॉमिनेशंस और 4 अवार्ड्स इनको मिले थे। 5वां अवार्ड जो था आईफा अवार्ड्स में, लेकिन फिल्म फेयर के 4 अवार्ड्स उनको मिले थे। और 41 ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस। वो जब नॉमिनेशंस मिले तो सामने कौन खड़े थे जो जीतते थे, उसके बारे में हम बात करेंगे इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आवर। वी एट लाइका गोल्ड इन गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाई जयमिन, जयमिन फूड्स। We are giving a tribute to Anand Bakshi ji on his 106th birth anniversary.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you 128.7 is just changed, 128.7 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Jaimin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
5: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: Start

0: रोड गैंस हिल इल्फर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फर्ड।
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
4: Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
5: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जी हाँ, आपने वो गाना सुना जो मैंने earlier mention किया था और वो था मेहंदी लगी मेरे हाथ रे। अभी इनके चार गाने जो

0: इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स विन किए थे वो थे आदमी मुसाफिर है फ्रॉम अपनापन, दैट वाज 1978। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। तेरे मेरे बीच में वो एक दूजे के लिए, अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एंड ही वन द अवार्ड फॉर दैट वन। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1996 का गाना, जो जतिन ललित के संगीत के साथ था। उसमें भी आई मीन दैट इज मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बॉलीवुड एंथम, यू कैन से वर्ल्ड वाइड। एंड दूसरा है फिल्म ताल, 1999 की फिल्म, और साल 2000 में उनको अवार्ड मिला विद द सूफी रोमांस फिलोसॉफिकल गाना इश्क बिना। कंपोजर थे A.R. रहमान। तो ये चार अवार्ड्स उनको जो मिले थे फिल्म फेयर अवार्ड्स में, लेकिन 41 नॉमिनेशंस। ये 41 नॉमिनेशंस में कौन से गाने थे जो एकदम बेहतरीन गाने थे लेकिन नॉमिनेशन मिले थे? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो राइटर्स जिसके सामने ये नॉमिनेशंस आए थे उनके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे कि राइट इन द 1960s शकील बादायूनी वॉज रूलिंग द रूस्टर। शकील बादायूनी के जो गाने थे उनका हैवी उर्दू में अल्फाज लिखना, नोबडी कुड मैच दैट वन। एंड इन्होंने 3 कंसेक्यूटिव फिल्म्स में जीता था, 3 फिल्म्स कंटिन्यूसली उन्होंने जो जीते थे शकील बादायूनी ने। दैट वाज 1961 में कौन सा गाना था, 14वीं का चांद, सुपर डुपर हिट ऑफ द फिल्म 14वीं का चांद। एंड हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं फिल्म घराना 1962, 3 कंसेक्यूटिव अवार्ड्स इन 3 इयर्स। एंड कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद का 1963 में। सो ही वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड एट दैट टाइम, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट आनंद बख्शी। इन दोज ईयर्स आनंद बख्शी जी के गाने इतने सराहे नहीं जाते थे, लेकिन जब शकील बादायूनी जी की तबीयत थोड़ी नासाज होने लगी इन द लेट 60s और 70 में वो जब गुजर गए, तो जो नए राइटर्स जो जितने आ गए थे वो सब मार्केट में आ गए, लेकिन आनंद बख्शी स्टार्टेड रूलिंग। आनंद बख्शी जी ने, इनकी जो अदाकारी थी, जो एबिलिटी टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस इनटू सिंपल रिलेटेबल वोकैबुलरी, वो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आ गया, बिकॉज राजेश खन्ना उन दिनों हीरो बन गए एंड ही वॉज द क्रेज। और राजेश खन्ना के गाने लिखकर इन वेरी सिंपल फॉर्म्स, लोग पिकनिक में जाते थे तो साथ में गाना गा सकते थे, ऐसी सिंपल लिरिक्स लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वाली लिरिक्स। अभी मैं आगे जाते हुए आपको बताऊंगा कि जो द डिफीट्स ऑफ आनंद बख्शी अगेंस्ट जावेद अख्तर, अगेंस्ट गुलजार, अगेंस्ट समीर, अगेंस्ट संतोष आनंद, ऐसे कौन से गाने थे जिसके सामने इन राइटरों के गाने जीतते गए और इनको नॉमिनेशंस मिलते गए। आनंद बख्शी जी को हम याद कर रहे हैं वेरी फॉन्डली।
1: मेकिंग समर फील बेटर, दिस इज लाइक अ गोल्ड। To Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Look at you. The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons, from dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
10: Two businesses.
11: Same town.
10: Same service.
11: One appears on page one of Google.
10: The other doesn't.
11: Guess which one gets the customer?
10: The truth is brutal.
11: The first page of Google gets the business.
10: Everyone else gets what's left.
11: So here's the real question.
10: When your customers search for what you sell, do they find you?
11: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
12: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
15: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.
0: Gusaki Maaf, it is the 196th birth anniversary, not 106th.

ये गाना नॉमिनेट किया गया था और उसके सामने जीते थे संतोष आनंद जी। संतोष आनंद जी ने फिल्म शोर में गाना लिखा, विच वॉज, आपको मालूम ही है, द ग्रेटेस्ट सॉन्ग, एक प्यार का नगमा है। इसलिए आनंद बख्शी जी को अवार्ड नहीं मिला था फॉर दिस सॉन्ग, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। संतोष आनंद जी को फिल्म दोस्त के सामने उन्होंने गाना लिखा था मैं ना भूलूंगा रोटी कपड़ा और मकान, और चिंगारी कोई भड़के वो गाने के सामने एक प्यार का नगमा, इन दो गानों में वो हार गए थे अगेंस्ट संतोष आनंद।

0: गाड़ी मुझे भी बुला रही है लेकिन 4 बजे तक मैं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू निर्मला जी। नेक्स्ट गाना सुनिएगा शालीमार फिल्म का।
1: Bali Brumbat on Gold Afternoons.

0: मैं तो एक और दुनिया में हूं अभी, आपको भी पहुंचा दिया उस दुनिया में, है ना। इस आवर में हम फिलोसॉफिकल गाने आनंद बख्शी जी के सुनाएंगे आपको, लेकिन एक बात पे मैं गौर करना चाहता था और आपको भी पॉइंट आउट करना चाहता था। कोई भी राइटर ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में जिन्होंने बाप के साथ काम किया और बेटे के साथ भी काम किया, जी हाँ, दो दो जनरेशंस तक। जैसे आनंद बख्शी जी ने रोशन जी के लिए काम किया तो उनके बेटे राजेश रोशन के साथ भी काम किया, एस डी बर्मन के साथ काम किया तो बेटे आर डी बर्मन के साथ भी काम किया, चित्रगुप्त के साथ काम किया तो उनके बेटों आनंद और मिलिंद, दोनों बेटों के साथ काम किया आनंद मिलिंद के साथ, कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया तो कल्याण जी के बेटे विजू शाह के साथ भी काम किया, नदीम श्रवण के साथ जब काम किया तो श्रवण जी के बेटे संजीव दर्शन, दोनों बेटे, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। सो लुक एट दी होल वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स एंड द एज फैक्टर ऑफ ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके साथ आनंद बख्शी जी ने इतनी बेहतरीन अदा से काम किया। अब देखते हैं कौन से राइटर्स के सामने वो जीत नहीं पाए थे। जैसे कि एक लेट करियर कॉम्पेटिटर जो थे, दैट वॉज आफ्टर शकील बदायूनी, लेट करियर कॉम्पेटिटर में जावेद अख्तर जी का नाम आता है जिनकी पोएटिक डेप्थ इज अनमैचेबल, बड़ी गहरी बातें करते हैं और सोच भी इतनी गहरी। सो जावेद अख्तर जी के सामने आनंद बख्शी जी ने कौन से गानों में वो जीत नहीं पाए। जैसे कि 1998 का साल था और आनंद बख्शी जी ने गाने लिखे दिल तो पागल है, वो सारे गाने इन्होंने जब लिखे, और फिल्म परदेश के गाने, सुभाष घई की फिल्म, आज भी वो गाने कितने सुनाई देते हैं, लेकिन उसके सामने एक ही गाना फिल्म बॉर्डर का, संदेशे आते हैं, जहां पे जावेद अख्तर जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर 2002 में गदर फिल्म में आनंद बख्शी जी ने गाना लिखा था उड़ जा काले कवां, तो सामने एक गाना खड़ा हुआ फिल्म लगान का, राधा कैसे ना जले, और वापस जावेद अख्तर जी ने फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। गुलजार साहब ही रोट एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स उर्दू एंड हिंदी, क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, उर्दू एंड कॉम्प्लेक्स उर्दू और हिंदी इमेजरी में लिखने वाले गुलजार साहब के सामने आनंद बख्शी की सिंपल एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज फॉर द मासेस, ये दोनों कंपटीशन में थे। 1981 में 4 out of 5 nominations ऑफ आनंद बख्शी फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 1981, चार गाने 5 नॉमिनेशन में से, चार गाने तो आनंद बख्शी के ही थे, 80% उनका ही चांस था जीतने का। फिल्म्स थी कर्ज और आशा, कर्ज के गाने आपको तो सब मालूम ही है, एंड आशा फिल्म के शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, सारे गाने हिट थे, लेकिन जीते कौन, गुलजार साहब। इन्होंने गाना लिखा आन मिलो सजना फ्रॉम द फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, उसके लिए उनको अवार्ड मिला। 1992 में वापस दोनों भिड़े, लम्हे में एक श्योर शॉट गाना, कभी मैं कहूँ, लम्हे का गाना जो हरिहरन जी और लता मंगेशकर जी ने गाया, दैट वॉज अ श्योर शॉट टू विन इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स, लेकिन जीता किसने, गुलजार साहब ने, अच्छा गाना था, वाह क्या गाना था, फिल्म थी लेकिन, और गाने के बोल थे यारा सिली सिली समझ गए ना। फिर समीर जी के सामने कंपटीशन हुई 1991 में नजर के सामने, फिल्म आशिकी का गाना, उसमें इनको अवार्ड मिलने वाले थे लेकिन समीर जी को उसी फिल्म में एक ट्रैक के लिए समीर जी को अवार्ड मिला। 1994 में खलनायक में आनंद बख्शी जी ने क्या कमाल कर दिया, चोली के पीछे हर एक स्टेशन पे, हर एक टेलीविजन पे, हर एक रिक्शा में वही गाना बजता था, हर एक नाइट क्लब में वही गाना बजता था। लेकिन कौन सा गाना जीत गया? हम हैं राही प्यार के, जो समीर जी ने लिखा था घूंघट की आड़ से। जी हाँ, सो संतोष आनंद, जावेद अख्तर, गुलजार साहब, समीर, ये कंपटीशन में थे आनंद बख्शी के। लेकिन आनंद बख्शी जी के गाने आज भी सुनाई देते हैं। जो भी गाना मैं कहूं, प्रेमनगर का, आपकी कसम के गाने, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इनके बेटे से मेरा काफी संपर्क होता है, राकेश आनंद जी के साथ, और उन्होंने एक किताब लिखी है जो मैं काफी पढ़ता रहता हूं। राकेश आनंद जिन्होंने इनके पिताजी के लिए किताब लिखी, नगमे किस्से बातें यादें ऑफ आनंद बख्शी, बड़ी सक्सेसफुल किताब है। एंड आप भी ले सकते हैं ये किताब, इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। मैं सेल्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आनंद बख्शी जी के बारे में जानकारी करनी हो तो मैं 3 घंटे में सब कुछ नहीं बता सकता। बट इन्होंने कंफर्म किया था कि 645 फिल्म्स में 3901 ट्रैक्स एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 आईफा अवार्ड, 41 नॉमिनेशंस, वो थे आनंद बख्शी जी, इनका रिकॉर्ड। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द ट्रिब्यूट, लेट्स लिसन टू हिज सॉन्ग्स नाउ। मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.7 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
4: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02 9903963575 Greens Bar Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
9: Anuj Chopra Foundation proudly presents an evening of elegance hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
11: Jaam chalne lage.
9: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
14: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड.

0: Asian Retro Music Station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
1: एक गलती जो हुई मेरे से उसका एक रीज़न है. मैंने कंप्यूटर में वर्ड डाला था तड़प. अब कंप्यूटर ने गाना डाल दिया तड़प तड़प के. And that was not written by Anand Bakshi ji. By mistake, I said Anand Bakshi ji. Lekin that song was written by Mehboob. And Tadap ke gaane jo unhone likhe the. And that was ek gaana tha, Mere Dil Ne Tadap Ke. Mere Dil Ne Tadap Ke. Jab Naam Tera Pukara. To wo gaana dalne ki jagah pe. ये गाना आ गया था. और एक रोज़ मैं तड़प कर, कितना खूबसूरत गाना है एक रोज़ मैं तड़प कर. कौन सी फिल्म का था वो? आई थिंक बेमिसाल. तो वो बेमिसाल का गाना मैं आपको सुनाना चाहता था लेकिन बात कुछ बदल गई वहाँ से. सो आई एम थिंकिंग कि मैं वापस सुनाऊँ वो गाने या एक दूसरा गाना है फिल्म प्रेमनगर का. प्रेमनगर का सुनाता हूँ. गुस्ताखी माफ़. अगर मौका मिला तो वो तड़प वाले गाने मैं आपको जरूर सुना दूंगा.
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म है अपनापन। क्या गाना लिखा और क्या गाया रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने।
1: Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: Like I told you about Anurodh film, jisme word aata hai tadap, mere dil ne tadap ke

0: ओ वाह वाह वाह, मैं एक ही बात कहना चाहता था कि एक सीक्रेट होती है बिटवीन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड राइटर्स। कभी कभी क्या होता है कि राइटर्स अपनी ट्यून बना के म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स को अच्छा नहीं लगता कि ये बात पब्लिसाइज हो। और आनंद बख्शी जी वॉज वेरी हैप्पी विद द थॉट कि अगर उन्होंने कुछ ट्यून दी हो म्यूजिक डायरेक्टर को और उन्होंने अपनाई हो और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके, इन्होंने थोड़ा सा एनहेंस करके उसको सजा के गाने को और उसमें संगीत डाला हो, ही डिड माइंड, ही डिड नॉट वांट इट डिक्लेयर्ड के ये भी लिखना के लिरिक्स बाय आनंद बख्शी एंड कंपोजिशन बाय आनंद बख्शी। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू जस्ट राइट द सॉन्ग। अभी रीज़न क्या था कि वो गाने गा सकते थे और ट्यून बना सकते थे, बिकॉज ही हैड कम इन टू द इंडस्ट्री टू बिकम ए प्लेबैक सिंगर। वो प्लेबैक सिंगर बनने के लिए आए थे, लेकिन फिर ही स्टार्टेड राइटिंग एंड ही वॉज मोर सक्सेसफुल जब उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर जो सिंगर्स हैं जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, इन सबको देखकर उन्होंने सोच लिया कि नहीं, इधर मेरा चांस नहीं लगने वाला, क्योंकि उन्होंने दो चार गाने गाए तो हैं। इवन लता जी के साथ इन्होंने गाना गाया था, मोम की गुड़िया में, बागों में बहार आई, सैंग विद वेरी गुड फीलिंग्स, लेकिन वो बात नहीं बनती जो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर में थी। तो मैं ढूंढ रहा था सपनों में, वो भी एक गाना था एक सोलो, फिर शोले में चांद सा कोई चेहरा, इट वॉज अ कवाली विद मन्ना दे, किशोर कुमार एंड भूपिंदर जी, एंड इट्स ओनली ऑन द वाइनल ये कवाली जो है, उसमें भी उन्होंने गाया था। महाचोर 1976, चरस फिल्म में इन्होंने गाया था, फिर बाली का बद्दू, इन सब में इन्होंने कुछ अपनी आवाज़ दी थी। लेकिन मैं तो विटनेस हूँ, जब मैं आनंद राज आनंद के भाई हैरी आनंद की शादी में मैं गया था दिल्ली में, तो वहाँ पे रिसेप्शन में इन्होंने मतलब माइक लिया और कहा कि मैं एक गाना सुनाता हूँ। मैंने भी सुनाया था, सबने सब एक के बारी बारी आते थे, तो सबने गुजारिश की कि आनंद जी आप तो सिंगर हो, आप भी एक गाना सुना दो। तो उन्होंने माइक लिया, बोलते मेरा लेटेस्ट गाना मैं जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ वो आपको सुना देता हूँ, आप बताइएगा हिट है या नहीं। तो उन्होंने गाना गाया और सब लोग बड़ा नाचे और कहा कि ये गाना हिट है, और गाने के बोल थे मैं निकला गड्डी लेके, वही गाना मैं निकला गड्डी लेके, इतनी सिंपल लिरिक्स, बट इन्होंने ट्यून बनाई थी और इन्होंने ट्यून बना के सजा के दी हुई थी और ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया। तो ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो या आर डी बर्मन हो, उनकी म्यूजिक रूम्स में बैठकर इन्होंने कितनी ट्यून्स बना के भी दी हुई थी रफली, बट ही नेवर टुक क्रेडिट फॉर इट। सो आई थॉट आई शेयर दैट बिट, एंड वन ऑफ द रीजन्स व्हाई ही वॉज सो सक्सेसफुल, ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि वो बैठ के म्यूजिक जो नॉट म्यूजिक डायरेक्टर बट डायरेक्टर जो होते थे फिल्म के, उनसे वो नरेशन दो तीन बार सुनते थे फिल्म की कहानी, और सवाल इतने सारे पूछते थे, सिचुएशंस पूछते थे, ये गाने का सिचुएशन कैसा है, और फिर वो सिचुएशन को एकदम एब्जॉर्ब करके वो गाने बनाते थे, घर जाके लिख के वापस लाते थे। और गाना तीन अंतरे का हो या दो अंतरे का, वो छः छः आठ आठ अंतरे लिख कर लाते थे, बोलते इसमें से चुन लो, और अगर वो नहीं जचा तो वहाँ खड़े खड़े ही वुड राइट इट इन उर्दू, ही वुड राइट द लिरिक्स, बना के एकदम दे देते थे स्पॉन्टेनियसली। नाउ दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ गॉड सेंट लिरिक राइटर। तो आगे जाते हुए, वी गॉट अ कॉम्पिटिशन कमिंग, यस, आर यू रेडी? ओके, हियर गोज।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन।
0: Okay, the competition is Laika Radio Network teams up with Sifat Events and Soli Jam. Sifat Events and Soli Jam, London, for a night of divine soulful music with Prince of Ghazals, Ranjit Rajwada. Remember, Ranjit Rajwada had come to our studio and we did a beautiful interview, and Anisa Nasir ji ne YouTube pe, Laika YouTube pe unka interview bhi kiya tha, and the show is also going to be anchored by Anisa Nasir ji. It takes place at Harrow Arts Center on Thursday, 30th of July at 7 p.m. What you have to do is send in the word ghazal. Yes, send in the word ghazal and your email ID, your full name and telephone number. Full name, telephone number, email ID, and the word ghazal. Yes, G-H-A-Z-A-L, G-H-A-Z-A-L, the word ghazal, and 07-424-232323 pe aap information bhejiyega. And if you don't win, don't worry, you can purchase the tickets from harrowarts.com. Tickets are priced from £25. Use the code Laika Radio to get 10% off your tickets online. Ji haan. So, £2.5 bach sakta hai agar aap you go online and use the code Laika Radio to get the 10% off your tickets online at harrowarts.com. Winners' tickets will be emailed across, so please provide valid email address. Okay, name, telephone number, email ID, and the word ghazal. TNCs apply. Okay, the show is on Thursday, 30th of July at 7 p.m. at Harrow Arts Center. It's soulful music with the Prince of Ghazals, Ranjit Rajwada. Good luck.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 128.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Laika Gold.
2: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoon. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: Dreaming of paradise?
4: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
3: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
4: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
3: At all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
5: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
8: सच?
5: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयां और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
4: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
9: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
11: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
10: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
11: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
10: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
11: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
10: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
11: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।

0: फिल्म है बेमिसाल 1982 की, क्या गाना गाया ना, एंड द म्यूजिकल ट्रीटमेंट, वाओ।
1: एक रोज मैं तड़प कर।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आज दो मिस्टेक्स मेरे से हुई, और एक तो वो तड़प तड़प वाला गाना जो मैंने केके का आपको सुना दिया, एंड ऑफ कोर्स आनंद बख्शी का नहीं लिखा हुआ था, एंड दूसरा गाना था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने जो गाना लिखा था वो मुकेश जी का आखिरी गाना जो था, दैट वाज चंचल शीतल निर्मल कोमल, वो इरादा था सुनाने का, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम डाल दिया, विच वॉज नॉट रिटन बाई हिम, इट वॉज रिटन बाई पंडित नरेंद्र शर्मा, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू तो थी, नो डाउट अबाउट इट। यह सो आपको गाना मज़ा आया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुस्ताखी माफ़, ये बोलना ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट माई मिस्टेक्स। मैं क्लियरली रेडियो पे बोल भी देता हूँ क्योंकि उम्र का तकाजा है एक्चुअली।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.338, Indian rupees 128.87, Pakistani rupees 371.73, Afghanis 89.50, Kenyan shillings 172.99, and US dollars, Mauritian rupees 63.21.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.81 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

मैं लाइका छोड़ के जा रहा हूँ, तो सैंडी शाह विल टेक ओवर फॉर ड्राइव टाइम एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। राजपत्तन कल तक के लिए।

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस।
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड। अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
9: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. Sonatours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
10: Oh yeah.
0: On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
11: It is. You have to be really dedicated to be able to
12: become a
11: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
12: True.
11: Mm. Whether it's at home or whether it's family.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: और ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com. यू नो द क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग. Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
6: परंपरा भी फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
7: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
3: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. It's heavy on the M4 this evening onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. The A4020 Uxbridge Road has now eased between the A312 the Parkway and Southall Park. A312 Church Road and Mandeville Road cleared up from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northcote Station. Still slowing, however, on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner. Queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hangar Lane gyrated to the Tube, and minor delays on the central line between White City and Ealing Broadway and between White City and West Ruislip. That's due to an earlier faulty train at Tottenham Court Road. That's your latest traffic and travel.
2: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal, thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease, with flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in-store or online. TUI. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
3: Leica Gold. Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things, because it's time to move on from that ex.
5: Goodbye.
4: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
9: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
10: Rice खरीदने का perfect time आ गया है। Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. यानि के 4 times 5 kg, या 2 times 10 kg, या 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality और value, दोनों एक साथ।
11: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। Monday to Friday, जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।
12: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। 21st of July, ट्यूसडे, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे टेरिफिक ट्यूसडे, एंड टेरिफिक ट्यूसडे मनाने के लिए हाजिर हो गए हैं आप सब। तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सारे के सारे हमारे धुरंधर आ गए हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। लेट कमर से तो पक्का फाइन लेना शुरू करना ही पड़ेगा। एंड सम ऑफ आवर लिसनर्स आर सो क्यूट, आई मस्ट से, दे आर लाइक, अरे यार हम तो कब से सुन रहे थे, बस मैसेज करना भूल गए तुम्हें। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। आप इन्जॉय कर रहे हो ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इन्जॉय कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आसपास कोई वो हमारा जो स्मार्टफोन होता है वो भी रखा होता है, उसमें होता है व्हाट्सएप। तो मेरे जो प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स हैं, हाँ जी, आप भी फ़ोन उठा के हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए बड़ी सी स्क्रीन हमारे यहाँ पे लगा के रखी है, जहाँ पे आपके मैसेजेस आते हैं और हमारी गुफ्तगू आपके साथ में चलती रहती है। पूछिए आप सबसे, कैसे हैं आप सब? ट्यूसडे की शाम, नया दिन, कुछ नए से आप, कुछ नए से हम, लेकिन अब हो चुकी है शाम, तो इस नई शाम के लिए पूछना तो बनता है, कैसा रहा आपका दिन? सब ठीक ठाक, बढ़िया? कुछ भी मन में कहने लायक बात है, कुछ सता रही है चीज़ अंदर, दुख दर्द पीड़ा, नॉट लंबे लंबे ऐसे, लेकिन शॉर्ट में लिख के भेजिए। इफ़ आई कैन हेल्प, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। लाइफ थियरी लेके आई है अश्विनी? अरे बिल्कुल सुनाऊंगी लाइफ थियरी, और उसके साथ में एक रैंडम सा सवाल है ना, बहुत दिन से मैंने रैंडम सवाल ही नहीं पूछा आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग जवाब देते हैं और कई लोग ना एकदम शांत बैठ के वो जवाब सुनते रहते हैं, लेकिन नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा इस सवाल का जवाब। मेरा सवाल क्या है? सवाल आप सबसे ये है कि रोज़मर्रा की लाइफ में या ओवरऑल कुछ कुछ चीज़ें करना हमें पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, जो अपनी एशियन लैंग्वेज में कहते हैं, अरे यार बड़े ये चीज़ ना मेरी बड़ी जान पे आती है। अब जान पे आती है मतलब मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ करनी पसंद नहीं है। फॉर मी, जब भी कोई नई चीज़ घर में आती है, उसके साथ में आता है मैनुअल, तो वो मैनुअल पढ़ना मुझे बड़ा बोर होता है, मेरी जान पे आता है मैनुअल पढ़ना। साथ में लीफी वेजिटेबल्स का जो होता है ना, मतलब जैसे मेथी आ गई और ये सब चीज़ें, ऑब्वियसली भी क्लीन कोरिएंडर एंड मेथी, ये भी मुझे जान पे आता है, बट मैं कर लेती हूँ एट टाइम्स, एंड बीन्स को कट करना। सो मेरी तरफ से ये तीन चीज़ें हैं, मैनुअल, बीन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये तीनों चीज़ मेरी जान पे आते हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो यार करना पड़ेगा काम वो, लेकिन नहीं अगर किया तो भी चलता है, ऐसे वाला लिख के भेज जरूर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपए और 50 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:31 PM. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो आप लोगों को कौन सी चीज़ें करना पसंद नहीं है, इसकी भारी भरकम लिस्ट मेरे पास आ रही है। दे दनादन सारे के सारे लोग एज इफ लुके दे कि हमसे कोई पूछे कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे हाउस होल्ड चोर्स हैं जो आपको करना बड़ा बोर होता है, आपकी इच्छा ही नहीं होती है एंड यू डोंट लाइक टू डू इट। सो आ गई है वो पूरी की पूरी लिस्ट मेरे यहाँ पे आ गई है और भी ये चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो अब ज़रा हम चलते हैं लाइफ थियरी की तरफ। आज मैं कौन सी लाइफ थियरी सुनाने वाली हूँ? द कैंप फायर थियरी। कैंप फायर के बारे में हम सभी जानते हैं कि कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लोग बैठ जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। तो ये जो लकड़ियों का एक जो ये एक सर्कल में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं और उसमें से जो वॉर्म्थ मिलती है उसके आसपास लोग बैठते हैं। जनरली कैंप फायर कैंप्स में जब जाते हैं तब तो करते ही हैं, ठंड के दिनों में भी करते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि भाई जो वॉर्म्थ मिलती है ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक अच्छी फीलिंग भी होती है और साथ में अपने आप को लोग उस ठंड से प्रोटेक्ट भी करते हैं। जब तक उस कैंप फायर में से वॉर्म्थ मिलते रहती है लोग बैठते हैं और जैसे जैसे ये वॉर्म्थ ख़त्म होने लगती है, मतलब उन लकड़ियों में लगी आग जब बुझने लगती है, तो लोग उस जगह से उठ के चले जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे बैठते हैं और कुछ देर बैठते हैं। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कौन दो लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाए, कौन इसमें फिर से आग लगा के जला के यहाँ पे बैठा रहे, तो लोग निकल जाते हैं। और कुछ लोग जिन्हें वहाँ रुकना होता है वो जाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाते हैं और फिर पहले की जो लकड़ियाँ जल चुकी हैं उनमें से जितनी भी अग्नि या आग आ रही है उसमें ये नई लकड़ियाँ डाल के वहाँ पर रुक जाते हैं। अब हमारी ज़िंदगी से ऐसा क्या लेना देना, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। ह्यूमन लाइफ में दूसरे ह्यूमंस उस एक इंसान के साथ में रहना रुकना पसंद करते हैं जब तक उनका खुद का फ़ायदा उसमें से होता है, जब तक उनका मुनाफा होते रहता है। रिश्तों में लोग मुनाफे की वजह से बहुत ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, रुक जाते हैं और जैसे जैसे सामने वाले इंसान की कैपेसिटी कम होने लगती है कि वो लोगों को पैसे देना, इमोशनल सपोर्ट देना या किसी भी वे में अवेलेबल होना, जब किसी इंसान की कैपेसिटी कम होने लगती है तो

0: उसके आसपास के वो लोग, लेट इट बी देयर इमीडिएट फैमिली, उनके सिबलिंग्स, उनके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स जो भी हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज जो भी हैं, वो धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका मतलब तब तक निकल चुका होता है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही उस पर्टिकुलर इंसान के साथ एंड तक रुकते हैं क्योंकि वो तहे दिल से उस इंसान को प्यार करते हैं और उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते। वो उस इंसान की हिम्मत बंधाते हैं जो अपनी हिम्मत भूल चुका है या टूट चुका है। क्या आप की लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस कैंप फायर थ्योरी की तरह हमेशा आपके साथ में खड़े रहते हैं, आपके सपोर्ट में? मुझे मत बताइए, ध्यान से सोचिए। द कैंप फायर थ्योरी, लाइफ है आपकी, लोग हैं आपके, कैसी लगी ये थ्योरी जरूर बताइएगा।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: द इवनिंग शो विद अश्विनी। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM। याद

0: updates for London at Breakfast and Drive.
1: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal, thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease, with flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in-store or online. TUI. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
2: The Evening Show with Ashwini.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट travelhubworld.com
5: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है
6: तो फिर इंतजार क्यों हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में
5: सच
6: बिल्कुल देश का असली स्वाद लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह
7: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA कॉल करें 07555-506015 बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ in Ilford.
8: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
9: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
10: SonarTours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonarTours on 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 47 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। यादों की बारात में आपको सुनाया 1957 में रिलीज फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। छोड़ दो आज, व्हाट अ लवली ट्रैक दैट वाज। और उसके बाद में क्या बात है, मोहम्मद रफी की आवाज में संगम फिल्म से सुनाया ये गीत 1964 में। तो 60s वाले बच्चे जो है, नॉट 60 ईयर ओल्ड, 60s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे, आई एम श्योर वो सभी बेहद खुश हो गए होंगे। या इतने ब्यूटीफुल गाने, इतने अमेजिंग लिरिक्स, इतनी अच्छी कंपोजिशन, मतलब दिल जो है ना बाग बाग होता है। एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग अपने बाग में, अपने गार्डन में घूमते घूमते है ना, पेड़ पौधों से गपशप करते हुए या अपने पेड़ पौधों को हमारा ये शो सुनाते हुए इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने आप सबसे पूछा कि ऐसे कौन से हाउस होल्ड चोर्स हैं जो आपको लाइक यार ये, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि नहीं आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू इट, आई डोंट लाइक डूइंग दिस। ओके, सो आयनिंग करना, कपड़ों को आयन करना, ओके, ये वाला टॉप पे आया है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने यही लिख कर भेजा है कि यार कपड़ों को आयन करना ना अश्विनी बहुत ज़्यादा बोर होता है, पता नहीं क्या ही इसका प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि there is an ironing machine which is going to be come out, I'm thinking कि होगी, शायद कई देशों में आ गई होगी। एक्चुअली मैंने कुछ 3-4 साल पहले उसमें अपना नंबर भी लगा के रख दिया, जैसे रोटीमैटिक का हुआ था ना कि रोटीमैटिक आ रही है, तो वैसे ही ये कपड़ों को आयन करने के लिए बस अपने शर्ट या जो भी कपड़ा है उसे हैंगर पे लगा के एक ऐसा बॉक्स जैसा है जिसमें ये लटका दीजिए और कुछ देर में आपका ये कपड़ा आयन होके आता है बाहर। आहा, किसी के पास है ये मशीन जरा हमें बताइए।
1: लाइका गोल्ड Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.83 Indian rupee, 371.84 Pakistani rupee, 450.01 Sri Lankan rupee, 165 Bangladeshi taka, 89.44 Afghan Afghani, 172.98 Kenyan shilling, 1.33 US dollars and 63.21 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.17 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: चलिए 21st of July ट्यूसडे, आज हम मनाते हैं टेरिफिक ट्यूसडे ऑन दिस इवनिंग शो। तो आज का पहले आवर का आखिरी गीत कौन सा होगा? सत्य भी सत्ता फिल्म से जिंदगी मिलके बिताएंगे। तो ये वाला गीत ना मेरी तरफ से आप सब के लिए अराउंड द ग्लोब, आप जहाँ पे भी इस शो को अभी सुन रहे हैं, द इवनिंग शो विद अश्विनी में आप और हम मिलके आज ये प्लेज लेते हैं, आज एक कसम लेते हैं कि जिंदगी मिलके बिताएंगे और साथ में ये शो के साथ में गानों के साथ में इंजॉय करते जाएंगे। द कैंप फायर थियरी बहुत ज़्यादा पसंद आई है आप सबको और सभी लोग अपने अपने अनुभव मुझे लिख के भेज रहे हैं। देखिए ह्यूमन लाइफ है ना, होना ही है, ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में आना ही है कि कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, अगर वो वापस आ गए मतलब उन्हें किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, आप उनको फिर से छोड़ दीजिए। जी जी जी, टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है कि अश्विनी आप ज़रा फटाफट एक छोटा सा ब्रेक एंड उसके बाद में आखिरी एक गीत इंजॉय करते चलिए।
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट्स, द इवनिंग शो विद अश्विनी।

आप भी आ जाइए बिल्कुल सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी में। और इस आवर का आगाज हमने किया था, पहला गीत था प्यार किया तो डरना क्या, उदित नारायण अलका याग्निक तनिष बागची की आवाज में दीवाना मैं चला, एंड ये फिल्माया गया था सलमान खान पे। देखो मैंने देखा एक सपना, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में लव स्टोरी से लिया ये गीत। बिल्कुल अमित कुमार जी ने कम ही गीत गाए लेकिन जितने गाए मोस्ट ऑफ देम वर सुपर डुपर हिट। एंड इस आवर में हम क्या बातें करने वाले हैं भाई, बिल्कुल जो बातें हम सबके दिल के बड़ी करीब होती है और कुछ अच्छा सुनना, तो गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड जिसके बारे में पता नहीं दुनिया बात कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूर बातें कर रहे हैं। क्या बात है यार, आयनिंग कितना परेशान कर रहे हैं, अभी भी कितने लोग मुझे कह रहे हैं कि अश्विनी आयनिंग करना बहुत बहुत बहुत मुश्किल लगता है यार, बहुत बोरिंग होता है ये काम, है ना। एक्चुअली जो आयन फ्री क्लोथ्स होते हैं ना, वो आई थिंक दे आर द बेस्ट काइंड ऑफ क्लोथ्स ना, कि जब आयन ना करो उनको, वॉशिंग मशीन में से निकाल के भी इंसान पहन ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली, है ना। कुछ कुछ टेक्सचर्स जो होते हैं कपड़ों के वो बड़े ही लुभावने होते हैं उन लोगों के लिए जिनको आयनिंग करना पसंद नहीं है। Send money to India with competitive rates with Yono Ica UK online and via the SBI UK branch. एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 इंडियन रुपए एंड 50 पैसे, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनाया आप सबको ये गीत मेला फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1971. आई हैव टू से दिस गीत इज़ वेरी स्पेशल एंड डियर टू मी बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मेरी आई, मेरी मम्मी, उन्हें लता मंगेशकर बेहद बेहद पसंद थी, तो वो ना उनकी कैसेट्स रिकॉर्ड करके मंगवाती थी हम लोगों से. वी यूज़ टू गो टू द कैसेट शॉप एंड वी यूज़ टू गेट दिस, एंड द मोमेंट दिस गाना केम इन फ्रंट ऑफ मी मैंने सोचा प्ले लिस्ट में ज़रूर प्ले करते हैं. बहुत बहुत सुंदर गीत है. कैसे ना देखो कैसे गीतों के साथ में हमारे किस्से कहानियाँ जुड़े हैं, और आप लोगों में से कितने हमारे लिसनर्स हैं कि हर एक गाने के साथ किसी ना किसी की कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी होती है, इसीलिए वो हमें मैसेज करके बताते हैं. चलिए थोड़ा मुस्कुराते हैं क्योंकि अब बात करेंगे कुछ ऐसी गुड न्यूज़ के बारे में जिसे आप और हम यहाँ सुनते हैं ऑन द इवनिंग शो विद अश्विनी. सो UK स्टार्टअप इज मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैक्टीरिया इन द सॉइल. क्या बात है, दिस इज समथिंग न्यू. यूनिक डबल कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी लेट्स ट्विन्स हियर मॉम्स वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर. सोचिए छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी की आवाज़ पहली बार सुनेंगे, ओ माई गॉड कितनी खुशी की वो मोमेंट होगी. Hospital opens roof garden where critical care patients can enjoy the outdoors for hours with full care. This was much needed, I believe. Woman wins lottery and immediately gives neighbors 5,000 to take the family on vacation. Seriously? Aise log hote hain yaar? Kya baat hai? Record low child mortality rates recorded in both India and China. Dad gave up his old Mustang to raise 6 kids. Decades later, his son got it back. Actually, ऐसे होता है कि बच्चे अपने parents के लिए, उनके parents ने जो भी उनके लिए sacrifice किए होंगे जब ये बच्चे छोटे होते हैं, तो बड़े होने के बाद definitely they make a point कि parents के लिए वो सारी चीज़ें provide करें जो शायद उन्होंने अपनी young age में sacrifice की थी अपनी family के लिए. I'm sure आप, मैं, हम सभी के पास ऐसी कुछ न कुछ किस्से कहानियाँ हैं ना हमारे parents को लेके, जहाँ पे उन्होंने sacrifice किया होगा जब वो भी enjoy कर सकते थे चीज़ों, लेकिन they said no, it's for our kids. ओके, नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं दैट इज मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में. थोड़ा सा इनकी अभी मन की बातें सुनो ना, ये क्या कह रहे हैं, ना ना करते मतलब क्यों तो ना करी और क्यों तो हाँ करी.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Honestly, I've been putting MTD off. First it was, I'll do it after this job. Then after some grouting, after sorting the back of the van, after fish fingers and peas. And then I thought, no, just get it done.
3: Get MTD done simply with Sage for free. Just connect to your bank, we'll sort your transactions, then submit your update to HMRC. Search Sage MTD.
4: The Evening Show with Ashwini.
5: Dad!
6: What's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milayein 02088390880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
8: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Lyca Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code LIKA. Laika Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
12: Jaam chalne lage.
11: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
13: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
14: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
13: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
14: गारंटेड
13: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
14: फोन 020-8574-8410।
13: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track, brought to you by Derry Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: emotion of the day.
1: That engine ki city. Yes, that city, Maro Mandole. Beautiful track, है ना? And studio में मैंने इतना volume बढ़ा के रखा था यहाँ पे, एक एक instrument की आवाज, especially with तबले पे जिस तरह से ठक ठक एक एक जब beat आ रही थी ना, loved it. किशोर कुमार फैंस तैयार हो जाइए, अनुरोध फिल्म से आते जाते खूबसूरत थोड़ा मस्ती भरा गीत हो जाए अभी.
2: ये है लाइका गोल्ड.
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: Extra podcast update. एपिसोड नंबर 25 आ चुका है लाइका प्रेजेंटर्स की, उनके जिंदगी कहानियां, कैसे वो प्रेजेंटर्स बने. और इस कॉन्वर्सेशन में है डॉनी ब्रास्को, बाली ब्रह्मभट्ट, एनिका रूबी रजा रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर. कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं प्रेजेंटर्स को. उनकी दुनिया में रेडियो के अलावा और भी बहुत चीज़ें होती, लेकिन कैसे डील करते हैं, सारी की सारी बातें देख सकते हैं, सुन सकते हैं ऑन लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग platforms. Mike Extra
1: is here. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
2: Travel Hub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
6: बीकानेर वाला परंपरा भी,
7: स्वाद भी. बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट, हाउसलो, TW3 1QT. कॉल करें 0748-7687-885.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Welcome. This is the last and the third hour of the evening show with Ashwini. इस आवर का आगाज हमने किया था कयामत से कयामत तक, विच वॉज रिलीज्ड इन 1988 इस फिल्म से. उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज़ में गजब का है दिन. अब तो शाम रात हो गई भाई, लेकिन दिन तो अच्छा रहा ना, उसके बारे में था एक गीत. एंड इसके बाद में व्हाट अ मेलोडियस ट्रैक दिस वन इज, प्यार हमारा अमर रहेगा फ्रॉम मुद्दत फिल्म, विच वॉज रिलीज इन 1986. ठहरा वाला गीत, प्यारा गीत, दिल को छू जाने वाला गीत. मोहम्मद अजीज की आवाज़ डेफिनेटली, आशा भोसले के साथ में क्या कॉम्बिनेशन था, लव्ड इट. ओके जी, तो आज 21st of July बर्थडेज एनिवर्सरी स्पेशल डे, तो किसी और चीज़ के लिए भी आज का दिन स्पेशल डे है. एंड दैट इज़, आज क्या और स्पेशल मनाया जाता है, तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशल डे डेडिकेट कर दिया जाता है. आज मनाया जाता है नेशनल जंक फूड डे, नेशनल लेमिंगटन डे, लीगल ड्रिंकिंग एज डे, टेक अ मंकी टू लंच डे, सीरियसली दिस इज समथिंग यूनिक, नेशनल बी समवन डे, रॉयल वेल्श शो, इन्वाइट एन एलियन टू लिव विद यू डे. ये सच में मतलब किसने बनाया है, मुझे तो अभी सवाल आ रहा है इस चीज पे. वर्ल्ड क्वाली डे, फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश आर्कियोलॉजी, तो सारे इंटरेस्टिंग डे आज मनाए जा रहे हैं, उसमें से नेशनल जंक फूड डे. ये जंक फूड के बारे में अब क्या ही हम बात करें. हाँ, इतना जंक फूड हम लोग खा जाते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पे ना, मुझे लगता है एशियन कंट्रीज में ना, वी ऑल आर, देखो दो चीज़ें हैं हम एशियन लोगों के साथ में शायद, एक तो फूड हमारी जान आन बान शान है, और दूसरे होता है रिश्ते. ये दो चीज़ें हमारे लाइफ में ना बहुत ही क्रूशल है. अच्छा, खाने पीने मतलब देखो, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, मूड अच्छा है बाहर खाना खाने चले गए, मूड खराब है बाहर खाना खाने चले गए, कुछ काम है टाइम नहीं मिला बाहर खाना खाने चले गए, आज कुछ बनाने का मन नहीं है खाना खाने बाहर चले गए, एवरीथिंग इज अराउंड द फूड, है ना. तो ये जो जंक फूड है, जंक फूड तो मतलब आप रील्स देखिए, और स्पेशली वो जो फूड इन्फ्लुएंसेस की रील्स होती है, एक बार आपने वो रील देख ली तो आपके एल्गोरिथम में देह दनादन जंक फूड की जो रील्स पे रील्स आएगी, एंड देन यू विल बी लाइक कि यार अब तो सच में जाके कुछ ना कुछ बना के खाना पड़ेगा या बाहर से मंगवाना पड़ेगा. सो समटाइम्स वी जस्ट क्रेव समथिंग डिलीशियसली नॉटी लाइक द क्रिस्प सेवरी, लेकिन भाई ये तो यहाँ की हुई ना, हमारे वहाँ पे तो चलो वहाँ पे तो चाट भंडार जो होती है, कचौड़ी, समोसे, पकोड़े, नाम लीजिए और सारी डिशेस हाजिर. मतलब नॉर्थ ऑफ इंडिया से साउथ ऑफ इंडिया तक, ईस्ट ऑफ इंडिया से लेके वेस्ट ऑफ इंडिया तक, सेंट्रल, आहा, हर जगह खाना खाना और बस खाना.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 रुपए एंड 50 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आपने सुना ये गीत जो फिल्माया गया था हेमा मालिनी पे, मन्ना डे एंड आशा भोसले की आवाज में, सीता और गीता से लिया था ये गीत आपके लिए। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा, पुराने पिक्चर्स की अगर बात करें, फिल्मों की बात करें 70s और 80s की, तो लाला नाम जब भी आएगा ना, तो कोई एक सेठ जी विद बड़ी मूछे, या मूछे ना भी हो लेकिन बड़ा पेट, मतलब बड़ा पेट मतलब लाला, ये वाली ये चीज़ें इतने प्रोमिनेंटली याद आती ना। अभी जैसे इस गाने में वो शब्द आया लाला, लाला समझे गया, तो मेरे आंखों के सामने वो लाला आ गए, वो वाइट कुर्ता एंड विद धोती, एंड बस उनकी पूरी इमेज हमारे सामने आ गई। ओके, तो गज़ल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, मैं आपको सुनाने वाली हूँ गज़ल निकाह फिल्म से गुलाम अली की आवाज़ में, चुपके चुपके रात दिन।

0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
4: Voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. It's summer. Currency updates on the Leica Ray Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
6: For £1, you'll get 128.84 Indian rupee, 371.73 Pakistani rupee, 449.98 Sri Lankan rupee, 165.02 Bangladeshi taka, 89.14 Afghan Afghani, 172.98 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 63.21 Mauritian rupee.
7: Leica Radio.
5: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
8: Leica Gold.
5: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
6: Gold is currently trading at £98.18 per gram.
5: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: मिला रही है घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली बता दूं अभी कुछ सेकंड्स और बाकी हैं, पर चलो कर लेते हैं. इट्स 44 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. बस टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अब घड़ी कह रही है बस चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे जा सकते हो, अभी आपका टाइम हो गया है घर पे जाने का. तो बस यही कहेंगे गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस है, ज़रूर सुनेगा लाइका गोल्ड, लाइका गोल्ड टू लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो 90s. सुबह सवेरे आएगी हमारी अपनी काजल, तो उसका साथ दीजिएगा. एंड प्यार के बारे में जो मैं रोज़ कहती हूँ वही कहूँगी कि प्यार तो प्यार लो, प्यार बहुत ही प्यारी चीज़ है. एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, हम में से कोई भी उसका यूज़ नहीं करता. लाइफ सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, अपने आप का खूब ख्याल रखिए. मौसम सुहाना होते जा रहा है, गर्मी कहीं तो गायब हो रही है, एंड वी ऑल आर रियली हैप्पी. सो कल हम मनाएंगे मिड वीक, माई फेवरेट डे, दैट इज वेंसडे. ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
2: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio partner, Leica Radio Network.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208-150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
6: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार गीत

0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो

0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है वार।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विद्या।

0: बाबूजी,
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Daniel Prime Location
2: High Appreciation
3: in Dubai
4: Southall Travel 7 days a week Southall Travel 24 hours a day we're at our peak
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
9: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar small latte in a large cup that will be 10 minutes
10: no worries I'm having fun on Play Ojo
11: keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools including take a break and time checks to keep track of your play
9: here's your decaf oat milk extra but not piping hot
10: thanks playtime's over lovely
12: feel the fun Play Ojo
13: 18 plus gamble aware
14: packed for the trip Gifts? Passport?
15: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
16: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
15: Simzy?
16: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
17: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
18: T's and C's apply.
19: लाइक अ गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदा बहार गीत

0: Laika Gold. Laika Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल at all protected.
3: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
4: Backed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: 58 or sales@leicamedia.co.uk.
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर